ना जो नहीं करना दे सको पुलिस जमा का पैरा जो चार दिया वित्तीय जमा बाजू लेते ना का वो जुनाल पर का बिन टिकनिक का दौर माँ वो जुनाल दुमारी ने तेलम गए उस पर का बिन टिकनिक दुमारी ना दुक्सी जी करा ना फिदेल ने वेर पर ना दिना हमजा असन नो पास नो स्टॉप जा तो ये आप गम लो चाहो कहेर पर का बिन टिकनिक ना मेरा वो एक देवो माँ यान Demain matin, grand vieux Béchiro Lazan a vu une gourade. Il y a un tchèque au révérend. Pasteur laïque, seconde à Soudi Jonas. Il y a le patinjour, ma somme, j'y vais na tech. Il y a un amas qui appelle pas, il y a un qui n'est pas malin, j'ai besoin de pas finir sans son. Parce qu'il y a un amas, technicien, bon, bon, bon, bon.

अली बता नहीं जाए सिले देखी ते नूरी है अली बदर कतरे अली बदर कतरे जे जू कम ले कौन बांधो अली बदर कतरे जे जू कम सारी जस अली बद प्लीज फ्रांको अली बताई जे सांते पुगले दाम किनो पालो मागी जे सांते पुगले पी किनो पालो मागी जाकेलेन उती ताऊ बारे बनो ओंबे कुजी Mais nous, ce n'est pas dormi, j'ai pleuré. J'ai pleuré toujours, Jacqueline. Tout à l'heure que j'ai retourné ma série, Jacqueline. Que j'ai trouvé les manger, je ne pas manger. J'ai pensé toujours, Jacqueline. Jacqueline, où tu t'as, on va revenir, on va écouter. L'heure que j'ai retour que ma série Jacqueline Ali va Daniel Day Daniel Day je sentais pour les dames qui n'ont pas leur mari je t'aimais comme ma série Jacqueline voilà Avancez, allez-y, voilà. Avancez, allez-y. Ça va. Daniel Daye.